0: zam je jem ne jem zhe de dian jia yin ne ji jin chong ne wai ge ka de yin ne wai ge ka de de mi a jian wo jie xi zong zhan de ge bu san ba
1: yel kang de xin ya sa
2: 哈里，现在个三坑那些，现在国内啊，去打算个挖个卡德特别坚固，个什么站，得是个三坝个打算个三坑的那些，咱们都能想到个，罗布森跟前个进度个蓝色可能点啊些，罗牛咱多点些的了。现在去挖，可能你们成都挖个高这个等点啊些，罗布森跟前个卡布的，那天些的，可能你来，可能你个打算进度个蓝色可能怎么的等的来，卡德在同时写跟这个，呀，罗布森跟前就得么样呢？
3: ये क्या ना देखो ना ये देखो ये तीनों शिवा के टेस्ट होने का तो तातुंगा कलम दे पे हम लोग तुम्हारे नहीं आता पालन तुझे चेष्टा ही तनी तासंग बैकर का दर्द में जंग बोकर खत्म जाए दर्द कब संभाग लंग कला कंडेन चुनाव निकल लम से कुनो चुम्ब द आचुकर ते तंग रोग दातंग तासंग आचु सोमरिक बागे चुनाव निकल चुम्ब द दाम तन शोनो इन तने टेम्बल शिवा ही
4: ता तंजा ची जो बोले जंजर की ता तंजा को तंजा ना तो ती खापर ती ने लांग को तंजा ला सोखा यहाँ ची रंगे चिम्सा ना री ता लेटो को ना री तेरे सुमांचम ना री ता चेसे को ची आ ती ना ने ची रंग सिंबा छोआ तंजा चिर ना की लांग को तंजा सुन्जा तेरे यहाँ की लांग को तंगे तंगे लांग को जोपो ला तंजा ता तंजा ची ने で、それやけた、現場も手もじ、ジョージャーズチェタン。てに、太陽がとちろけた、ホナのチャフンでした。あ、やんちがとけて、ち、何人、ラサけて、ジムル、トンチナに、てらしよた。た、チセグルチがと、ラミジンドカネチャプやすら。うん。あ、てに、ラミジンドカネチャプセンドジュ、てらけた、てがとき、ポラ。ポランラヨバテンジラワタ。てね。お、てなじ、ジョージャーズチェナ、てに、
5: 아, 아, 못하마기다 레니 치사라나 직도 원준준에 팀이 봐 침성점도 대인적인 바다 때라지 산좀 청송세 때라지 근주기 때라지 지요 김 토모기다 뒷날 추 때라지 동태는 아주 믹스라 유비기 아주 기다 준주기 니 때라지 조전다 지 때네 독도 통통 시지바예 응
2: 드주체 때네 다성 로즌 괜찮게 좀 들라 예쁘지 트릭 때는 아주 다성 람세군도 그 워커 카드도 마게 다 특성 된다는 되는데 지금 토모들은 그냥 더 빨리 양질 안 그냥 더 빨리 드주체 시와이
5: 那是那他那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那
2: lam se kuno som dai nga ti ro nu se ji le
3: lam stom ba pu che chung ma ki ma sem bi par ngu khna che su ko je kl cha mi da bi thri hu chung yo ba la ji tem ba nam ji lam si sha sha ti ne geng ji che ma chung sum na zu hua ba li shung wa si gi ye nin tang shao ara tang tang pha tang da lung tang khol chung tang chung cher sala tang sao shema tang da da ani kup tang thar thi charul tang pharul khorwa tang diwa kang na yang lam ji yung sa tam bi manam cha chu ji ka cha cham la yang lam tang khan ja tham mel tendi lam la ariwi nyama ngu thu ta jeni xi si yun khin yo la
6: 都比没个东西，辛苦的年年，细思龙肯用药。不是这个话，是第二代人用肯用药了。而国际合作，这个叫那些人肯用药。而国际合作，这个叫那些人肯用药。 第一次去加拉采地，冷地了，一起去送行，坑着几路用坑的正几没冷行，俺几几行，我亲自用坑的最为没吃。拍什么机学经，农机机都用坑用，提没得被，俺来人人的正为加拉龙。是的。 家的周围，人民地区等着为冷等，拆机行话，前平级特大坝等着为冷，建的德巴，下一级啊，没特等着为冷，欧的是个巴，说起特等巴巴等着为冷，人行路啊，南面这个西巴等着为冷，欧级人巴，干的跨年七巴等着为冷，门边干巴，所谓特能大巴等着为冷。
7: 吃顿中吧，诺若尔干起起，对瓦等着为浪，所收集吧，后不个攒起几把等着为浪做，曾马只有南极，你不得就了给比，嫌弃个成多么下得人。还有这个等个南极，这得梦想牛绒，曾马南极地主的这个结果你的呢，这等得我麻烦死了，那么让人啦，所以我这个是孟加瓦的药把用。